तेरा इन्हें की आख दी का किस नाम सिमर प्रभ अपना गुरसिख अमृत वेले उठ जा इशनान कर ते इशनान करके अपने प्रभु का सिमरन कर नाम दे विच लीन हो जा सिमरन दे विच जुड़ जा यही तेरी रहनी यही मर्यादा है यही गुरमत है इस नाम सिमर प्रभ अपना मन तन भय करोगा कोट डिगण लाथे प्रभ सरना पते भय संजोगा प्रभ बाणी शब्द सुपाखिया गावो पढ़ो।

गरीब नवाज दो पैर दिन दे बीत चुके हैं, आन वाले दो पैर पता नहीं वेखांगा कि ना वेखांगा। धन गुरु नानक पातशाह कहन लगे।

दो सोने दे पैसे दिते, आख्या जा एक पैसे दा झूठ लैके आ, एक पैसे दा सच लैके आ। मर्दाना बाजार विच पुछदा फिरदा है भाई, एक पैसे दा सच चाहिदा ते एक पैसे दा झूठ चाहिदा। कई अनभोल मनुख अज्ञानी पुरुष माहौल भी करदे हन भाई, ऐसी वस्तु कदी बाजारां विच विकियां ते फिर ये है ही की, झूठ की है ते सच की है ये कौन दस सकदा है। ता एक जिस मनुख दे पूर्वले कर्म भगती भाव नाल भरपूर सन, इसका नाम सी मूल चंद। उदे पास जदों मर्दाना गया, आख्या की चाहिदे, मर्दाने आख्या भई एक पैसे दा सच चाहिदे, एक पैसे दा झूठ चाहिदे। ता मूल चंद ने एक कागज ते लिख दिता, मरना सच है, और एक कागज ते लिख दिता जीवना झूठ है। जे कोई कहंदा मैं सदा रही संसार विच रहना है, एदे वर्गा झूठ नहीं, ते जे कोई कहंदा भाई ए पता नहीं किस वेले अकाल पुरख दा सदा आ जावे, हम आदमी हां एक दमी ते जाना पवेगा। ए शरीर ता मिथ्या है, ए ता एक दिन मिट्टी दी ढेरी होना ही है। जे कोई कहंदा है भाई ए शरीर मिट्टी दी ढेरी होना है, एदे वर्गा कोई सच नहीं। तो जीवना झूठ है, मरना सच है, इसे लिए हजूर कहंदे अन्ना भाई ए मनुच्छा जन्म जप जप के सफल कर लो, पता नहीं दरगाह तो कदों सदा आ जाए।

बहु परपंच कर परधन लियावे। सुत दारा पे आन लुटावे मन मेरे भूले, कपट ना कीजे अंत नवेरा तेरे जी पहले। जेरी पापा दी खटी तू खट रिया है, जिना विच्चों तेरे अनेकां रिश्तेदार, बाल बच्चे घर वाली वरसाउंदी है। याद रख ए लेखा उना कोलो नहीं मंगया जाना, अंत न बेड़ा तेरे जी पै दीजे। एदे अमोलक श्वास जो वाहिगुरु ने तैनू बख्शे, तू उना दी कीमत ही ना जान सकिया। जिवें एक कंजूस सारा जीवन कमाई करता रहा, धन इकट्ठा करता रहा, ते मन विच सोचदा भाई चंगी तरह धन इकट्ठा करके ते फिर मैं इस नूं भोगांगा, फिर सुख मानांगा। सोचदिया सोचदिया अंत समा आ गया। जदों अंत समा आ गया, जमदूता ने आख्या भाई हुण तेरा अंत समा है ते तू साडे नाल चलना। ता कहन लगा मैं बड़ा धन जोड़े है, बड़िया मेहनतां कीतियां हन, बड़े छल कपट करके माया कठी कीती है, मैनू भोग तां लैण दिओ, आ मैनू 24 घंटे दे दिओ, मैं तुहानू 1 करोड़ रुपया दे दिंदा। जमदूता ने कहा एक पल भी नहीं मिल सकता, क्योंकि ए तन उथे चलदा नहीं, तू जिथे गल कर रही उथे तां नाम दा तन चलदा है। इस कंजूस ने आख्या मैं 5 करोड़ दे दिंदा हां, मैनू कुछ श्वास होर दे। आखिर कहन लगा मैं सारी जीवन दी कमाई जितना भी मैं कमाया है मैं सारा ही दे देंदा हां, मैनू कुछ श्वास उस दे बदले दे दियो। तां जमदूता ने कहा ए श्वास तां किसे भी कीमत ते तैनू नहीं प्राप्त होण लगे। तां कहन लगा फिर मेरी एक मंग है कि मेरी कबर ते लिख देना कि मैं सारे जीवन दे पल छिन कमाई विच धन इकट्ठे करन विच ला दिते, ते सारे जीवन दी कमाई दे बदले मैनू 1 श्वास भी नहीं मिलिया मुल। इस तो भाव है कि जितने अमोलक श्वास हीरियां लालां तो भी महंगे, मैं जप जप के सफल करने सी मैं व्यर्थ गवा दिते। क्योंकि हम आदमियां एक दमी पता नहीं अखीरला श्वास कदों आवे भाई, जे श्वास दे नाल तू जपया होवेगा ओ श्वास तेरा दरगाह विच कबूल हो जावेगा। इसलिए गुरु नानक सच्चे पातशाह

गुरु नानक सच्ची पातशाह बख्शिश कर दिया भाई पही प्राप्त मानख दे हुरिया गोविंद मिलन की एहो तेरी बरिया ए प्राप्त होए हन तेनु अमोलक श्वास ते जितने तक दुनिया विच तू रह रहे है पले पुरुषां पासों कोई चंगी गल सुन पले बन ते जे आप बोलना चाहुंदा है तो परमेश्वर दी भगती कर ओदा कीर्तन कर ओदा जस कर ताकि तेरा संसार ते आया सफल हो जावेगा इसलिए जब लग दुनिया रहिए नानक किस सुनिए चंगा सुनिए और चंगा ही कहिए मिथत नीवी नानका गुण चंगियाईया तत जिनानू ए चंगे गुण प्राप्त हन भाई उना दा संसार ते आउना सफल सफल हो जावेगा गुरु नानक सच्चे पातशाह।

हम ऐसे अपराधी। हर एक बंदा अपने गुणा का इजहार करता है, अपने गुणा की नमाइश करता है,

मैं इन्ना पुन दान करदा हां, मैं इन्ना सिमरन करदा हां। इथों तक थोड़ी जिन्नी गुरु दे दरो

अपराधी। जिन प्रभ जीओ पिंड था दिया, तिसकी भाव भगत नहीं सादी। तू जिडिया मेरे ते बख्शिशां कीतियां ने, जिडिया तू मेरे ते रहमतां कीतियां ने, मैं उन्हां तेरा धन्नवाद नहीं कर सकता। मैं बड़ा ही औगणा दा भरिया। देखो शब्द विच

मेहनत मजदूरी करन वाले अत दे गरीब सवेर दा प्रशादा शकया है पता नहीं शाम दा मिलना है जा नहीं पर मन बहुत सुखी है क्योंकि किरत धर्म दी है तू बलवांच लोक करे सब जाने जानी राम सतगुरु बख्श कर रहे हैं तू जिन्ना मर्दी लुक के पाप कर लै ओ जानी जान मालक तेनू सब जगह देख लेंदा है ओदी अखों ओले तू किते भी नहीं हो सकता सतगुरां ने आख्या गुरसिखा जे सुख चाहुंदा है मन

मालक दी नजर विच गुनाहगार ही बनी जांदा है। क्यों नहीं अपने अवगुण गुरु नूं दसदा वी सतगुरु मैं बड़ा वड्डा गुनाहगार हां, तू मैनूं दुनिया विच भेजिया जाके सिमरन कर, जिथे घर परिवार बच्चे पालने ने उथे सिमरन भी करी,

हम ऐसे अपराधी। ऐ सतगुरु देख असी केहो जे अपराध कर दे, देख असी केहो जे अवगण कर दे। सास करास भगती करन वाले ब्रह्म ज्ञानी बाबा आनंद सिंह जी, अज बाबा जी दे दरबार विच एक गुरमुख प्यारा फलां दी टोकरी लई ते जाके नमस्कार कीती साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब अगे।

और आप आए हैं दुष्ट दमन तू संसार तेजा। कहते ने मेरा मन नहीं करता तेरे चरणा तो, पर हुक्म भी मनना है, पर बार बार कह रहे ने मेरा दिल नहीं करता किसी होर दी ड्यूटी लाओ। प्यार नाल सत्कार नाल किसी जोर जबरदस्ती नाल नहीं, थापड़े दे दे के जिवें प्यो पुत्र नूं समझांदे बच्चे नूं आखदे कि मेरे पातशाह जी दे की वाक हन, आप फरमान देन आओ चलिए श्री हेमकुंड साहब जिथे मेरे कलगीधर पातशाह जी परमात्मा निरंकार नूं जवाब दे रहे ते की आख देन।

अगर तू परमेश्वर दा नाम जपेंगा ओदी ओट ओदा आसरा लवेंगा इना भगतां दी तरह ओ परमेश्वर तेरी भी रखिया करेगा तैनू ओ परमेश्वर हर सुख हर वड़ियाई अते अपने नाम दे नाल भी जोड़ेगा और अपने वर्गा बना लवेगा। इस शब्द दे विच अनेका महापुरुषां दा जिक्र नामदेव जी ने कीता पर आपां भगत अमरीक दे जीवन बारे विचार करांगे। भगत अमरीक एक बड़े ही चक्रवर्ती और प्रतापी राजे होए ने। राजे भी सन पर राजकुमार दे नाल भगती भी कमाई जिदे सदका अज आपां उन्हां दे जीवन बारे विचार कर रहे हैं। नामदेव जी बयान करते ने अमरीक को दियो अभय पद। भगत अमरीक नु अभय पद की प्राप्ति हुई। जन्म मरण दे चक्कर तू रहत हो गए। राज पवीखन अदक करो जिस तरह पवीखन नु श्री रामचंद्र ने रावण नु मार के लंका दा राज दिता। क्योंकि जेड़ा भी भगत हुंदा है उनु सुख परमेश्वर दिंदा है। इसे तरह जेड़ा अमरीक भगत है इन भी परमेश्वर ने बड़ी उच्ची पदवी दी। भगतां दी पदवी श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे विच सवैये महल्ले तीजे के जिदे विच अमरीक भगत बारे श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे विच इस तरह

मध्य भारत ओडिशा वाल से ਇਹ ਰਾਜਾ ਅੰਬਰੀਕ ਰਾਜ ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੇ ਸੁਖ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਰਾਜ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪਰ ਨਾਲ ਭਗਤੀ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਭਗਤੀ ਤੋਂ ਦਿਆਲ ਹੋ ਕੇ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਚੱਕਰ राजा अमरीक की रक्षा वास्ते हर वक्त इन्हां दे कोल रखिया होया सी कि जदों भी भगत ते कोई पीड़ पवे तां सुदर्शन चक्कर नूं ए हुक्म सी तू अमरीक की रक्षा करनी। इस गल की गवाही भाई गुरदास जी भी भरदे। राजे अमरीक ने वर्त रखे, पूजा पाठ कराया, यज्ञ कराया और दान पुण करने वास्ते बिंद्रावन पहुंचया। बिंद्रावन जिथे कृष्ण भगवान जी रिहा करदे सन, इस जगह आके 6 करोड़ गौवां राजे अमरीक ने दान कीतियां। 6 करोड़ गौवां दे नाल सोना चांदी अनेकां वस्तुआं होर भी दान कीतियां। धर्मी बड़ा सी, नेक बड़ा सी, दान पुन करके ए राजा अमरीक वापस अपने महलों में तुरैया। महलों में आके वर्त तोड़ना सी। वापस आंदे रस्ते दे विच दुर्वासा रिक्की का मेल होया। राजे ने दुर्वासा रिक्की नूं नमस्कार कीती पर दुर्वासा रिक्की क्रोधी बड़े सन। कहन लगे, राजन तू इस वेले कित्थों आ रहे? राजा अमरीक कहन लगे, मैं बिंद्रावन तो आ रहे हैं और महलों में जाके वर्त तोड़ना है। मेरी इच्छा है आप जी महलों में आके चरण पाओ, भोजन छको ता मैं वर्त तोड़ा। दुर्वासा रिक्की कहन लगे, ठीक है राजन, जदों तक मैं भोजन ना छका तू वर्त नहीं तोड़ना, मैं आवांगा जरूर। इस गल नूं भाई गुरदास जी ने अपनी वार दे विच इस तरह बयान किया है।

मोह व्रत है, अमरीक ने व्रत रखे। रात पई दुर्भाषा आया, दुर्भाषा ऋषि आया, अमरीक नाल मेल होया। ते हुण पेड़ हस उपारना, ओठ नावन नदी सिधाया। दुर्भाषा ऋषि नदी ते इशनान करन वास्ते चला गया कि राजन मैं इशनान करके आना, फिर प्रसाद छकांगा ते फिर तू अपना व्रत तोड़ी। अमरीकन लगा सत बचन। ए दुर्भाषा ऋषि नदी ते पहुंचया, इशनान कीता, पर है ए मन मर्जी का मालिक दुर्भाषा ऋषि। चाहिदा तां ए सी इशनान करके जल्दी वापस आ जांदा, पर इशनान करके ए होर नित क्रिया विच रुझ गए। उधर वर्त तोड़न दा समा निकलिया जा रहा। सारिया ने ही विचार कीती कि जापदे हुण दुर्भाषा ऋषि नहीं आणगे, क्योंकि देर बहुत हो गई है। अमरीक राजा कहन लगा, मैं वचन दिता, जे दुर्भाषा जी ने प्रसादा ना छकिया ते वर्त किस तरह तोड़ा। विद्वान सज्जना नु बुलाया, सारे कहा समा बीता जा रहा, दुर्भाषा ऋषि नहीं आया, या तो भुल गए ने या किधरे होर चले गए ने, ते तुसी हुण वर्त तोड़ लो, अन्न ना खाओ, पानी पी लो। सारियां दी सलाह ते भगत अमरीक ने पानी पी के ते अपना वर्त तोड़िया। ते दुर्वर्त तोड़िया उधर दुर्भाषा ऋषि आ पहुंचे। भाई गुरदास जी।

दुर्भाषा ऋषि ने हुक्म किया और चुड़ेल जिदे हाथ विच किरपान है भगत अमरीक नु मारन वास्ते वधी सारे दरबारी महापुरुष हैरान हो गए कि दुर्भाषा रेखी एक महापुरुष होके एक केड़ा अधर्म का काम करन लगे पर ओ परमेश्वर हमेशा अपने भगतां दी रक्षा करता है। ए चुड़ेल मारन वास्ते अगे वधी तां भाई गुरदास जी बयान करते ने चक्र सुदर्शन काल रूप होए पिहावल गर्भ गवाया। जिहड़ा सुदर्शन चक्र सी ओ काल रूप होके मौत दा रूप होके दुर्भाषा ऋषि दे कोल आ गया। सुदर्शन चक्र ने सारिया तो पहला उस चुड़ेल दी ओ बांह वड़ी जिहदे विच उहने किरपान फड़ी सी, फिर दूसरी बांह वड़ी, फिर सुदर्शन चक्र ने उस चुड़ेल दा गला वड़ के उसका अंत कर दिता। चुड़ेल मर गई ते हुण सुदर्शन चक्र दुर्भाषा ऋषि के दुआले हो गया। ते दुर्भाषा ऋषि जिहड़ा बड़े हंकार विच गुस्से नाल अखां लाल करके कोल खलोता सी ओ हुण इन्ना डर गया, ए भी भुल गया कि मैं एक ऋषि हां, जे भजांगा तो लोग की कहणगे पर जान सब नू प्यारी है। तां की होया ब्राह्मण भन्ना जीओ लै कि ओ ब्राह्मण दुर्भाषा ऋषि हुण भज पिया कि किसे तरह अपनी जान बचावा। ब्राह्मण भन्ना जीओ लै रखिया ना हंगण देव सुभाया। हुण कोई भी देवी देवता इहदी रखिया करन नू तैयार नहीं क्योंकि जिन्नू भगवान मारे उहनू फिर कौन बचावे। ए दुर्भाषा ऋषि अमरीक दी सभा विच भजिया, इंद्र लोक चला गया। कहन लगा इंद्र देवते नू मेरी जान बचा, पर इंद्र कहन लगा ए मेरे वस दी गल नहीं। ता दुर्भाषा ऋषि शिव लोक नू चल पिया। शिवजी भगवान कहन लगे हुण मेरे भी वस दी गल नहीं। दुर्भाषा ऋषि हुण ब्रह्म लोक नू गया ता ब्रह्मा जी कहन लगे तेनू बचाना हुण मेरे वस दी भी गल नहीं। ता फिर दुर्भाषा ऋषि बैकुंठ नू चला गया विष्णु भगवान दे कोल। ता विष्णु भगवान कहन लगे कि मवी तेनू नहीं बचा सकता। भाई गुरदास जी इस गल की गवाही देंदे ने इंद्र लोक शिव लोक तज ब्रह्म लोक बैकुंठ तजाया। सारे पास्यों इसनू आसरा जदू ना मिलिया दुखी हो गया दुर्भाषा ऋषि के सुदर्शन चक्र मेरा पीछा नहीं छड़दा। ता उस वक्त देवतियां भगवान सन सिख दे सबना समझाया। देवतियां ने अते भगवान विष्णु ने सारिया ने सिख दे ए सिख्या दिती, सबना समझाया, सारिया ने समझाया है कि दुर्भाषा तू भगत नू बुरा किया, तू भगत नू दुख देना चाहिया है। इस करके अगर वो भगत चाहेगा ताई तू बच सकेगा, नहीं तां तेरा बचना

राजा अमरीक दे राजमहला विच आया, पिछे पिछे सुदर्शन चक्कर भी है। हुण दुर्वासा रिकती मन विच मान नहीं रहा, हाथ जोड़ के ते अमरीक भगत दे चरना ते डिग पिया और कहन लगा, राजन मैनू माफ कर दे, मेरी जान बचा। पर सात संगत भगत अमरीक ए नहीं सोचता कि एक मां ऋषि मेरे चरणा ते डिगा पिया, ओदे मन विच मान नहीं, उन्हें फिर भी हाथ जोड़े ने। कहन लगे दुर्वासा रिखी नूं, तुसी बड़े उच्चे हो, परमेश्वर की बंदगी कीती है, तुसी मेरे पैरां ते मत्था टेको, ए ठीक नहीं। दुर्वासा रिखी उठ के खड़े होए ने, पर हाले भी हाथ जोड़े ने, क्योंकि सुदर्शन चक्कर हाले पिछा नहीं छड़ रहे। भाई गुरदास जी बयान करते ने, आए पिया शरणागति, माटी दा अमरीक छुड़ाया, भगत वछल जय बिरद सदाया। जदू ए दुर्भाषा रिखी भगत अमरीक दी शरण विच आया, ता फिर अमरीक ने बेनती की थी, है भगवान अपने इस चक्कर नू वापस बुलाओ, ते दुर्भाषा नू बख्श दो। अमरीक ने दुर्भाषा रिखी दी सुदर्शन चक्कर तो बंद खलास कराई, ता भाई गुरदास जी कहंदे ने, भगत वछल जय बिरद रखाया। ओ परमेश्वर भगत वछल है, वो अपनी बिरद ही रखिया करता है, भाव कि जेड़ा ओदा हो जावे।

ओ परमेश्वर, किस तरह उन्हें भगत अमरीक की रक्षा की थी। नाव ने दे ठाकर दई सुदामे त्रू अटल अजहूना कर अमरीक की तरह सुदामे ते कृपा की थी। त्रू भगत ते कृपा की थी। भगत हेत मारियो हरनाकश, भगत वास्ते नरसिंह का रूप बना के हरनाकश का अंत किया। नामा कहे भगत बस के सब अज हूं बल के द्वार करो। नामदेव जी कहते ने केसव परमेश्वर नू के है, सोने केसां वाला परमेश्वर, ये ओ जिहड़ा परमेश्वर है वो भगतां दे वास है। इस वास्ते अज तक वो बल राज दे द्वारे ते खलोता होया है। तो गुरु साहिब जी भी बाणी विच कहंदे ने भाई अमरीक ने सिमरन कीता, राजा होण दे नाल राज भी कमाया ते सिमरन भी, ते अभय पद नू प्राप्त हो गया। आओ भाई तुसी भी सिमरन करो, दुनिया दे काम कार करदियां अते अपने जीवन

0: से आना।
1: कलयुग में कीर्तन पर जाना, गुरुमुख जब ये लाए ते आना। आप तरह सगले कुल तारे हर दर्जन।